0: कई डेनिश सियासतदानों ने कहा कि तुम तो डेनिश तो तुम हो ही नहीं हो और तुम कैसे वजीर बन गई हो। तो ये जो सारी बातें हैं इस पे तनकीद तो बनती है बिल्कुल, और सिकंदर मलिक साहब ने, सदीक साहब ने जो तनकीद की है इसकी भी हम, इसको भी हम सराहते हैं बहुत कि अच्छा कहा उन्होंने।
1: बिल्कुल आपने बजा कहा, ऐसे मामला जो हैं इनको सामने लाया जाना चाहिए। और जब हम ये सुनते हैं कि हम अभी तक यहाँ पर गैर मुल्की पस मंजर के हामिल लोग हैं
0: जी,
1: या हम अभी तक अकलियत में हैं, हम डेनमार्क का हिस्सा कभी नहीं बन सकते, हम अपनी रवायात और इतिहास से मुंसलिक रहना चाहते हैं, तो ये हक जो है ये हमें यहाँ डेनमार्क का आइन देता है। दूसरी तरफ ये महज ये कह देना कि हमें ये ताने दिए जाते हैं, इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि हमारे लिए कितने मौके मौजूद हैं। अगर हम ईमानदारी से और अपनी मेहनत से और अपने असूलों पर काम लाते हुए उन मौकों से फायदा उठाएं तो सिकंदर सिद्दीक की तरह हम पार्लियामेंट के मेंबर भी बन सकते हैं।
0: जी दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, जी बिल्कुल।
1: लेकिन आप देखिए सिकंदर सिद्दीक ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उनको पार्लियामेंट के लिए, खैर वो तो उनकी पार्टी अभी तक क्योंकि वो शराय पूरी नहीं कर सकती थी इसलिए वो नहीं बनी।
0: जो चार के वतन पड़े
1: थे उनमें से कितने कामयाब हो गए,
0: लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं ना सर भाई।
1: मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, कोशिश जो है वो की जाए,
0: बहुत जरूरी है।
1: कहा जाए कि डेनमार्क में हमारे लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं या डेनमार्क में हमें यूं किया जा रहा है, यूं किया, वो वाकई मौजूद है, आप उनसे फायदा उठाने की अहलियत, काबिलियत और हिम्मत पैदा करें।
0: बिल्कुल खूब अच्छा। ये जो नई हुकूमत है उन्होंने यूरोप में जो सिक्योरिटी के बिगड़े हुए माहौल हैं, रशिया को एक ख़तरा बताते हैं, और ग्रीनलैंड के दिफा के हवाले से जो है उन्होंने अमेरिका पे भी क्रिटिसिज्म किया और कहा कि हम ग्रीनलैंड पे कोई समझौता नहीं करेंगे और इस अमेरिका के दबाव को जो है उसका हम सामना करेंगे। तो ये जो वज़ीर आज़म ने ये बात की है तो इसमें भी तो कोई सच्चाई है।
1: बिल्कुल इसमें सच्चाई है, और डेनमार्क को खुद जिस तरह से डेनमार्क ग्रीनलैंड पर अमरीकी दबाव का दबाव करने के लिए इकदाम ले रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त
0: जी जी
1: जा रहे हैं
0: जी।
1: और ये मैं ट्रंप साहब की तरफ से हर रोज एक नया क्वेश्चन छोड़ देना ग्रीनलैंड के बारे में
0: जी,
1: ये इंतहा खतरनाक हो सकता है
0: जी।
1: और डेनमार्क इससे पूरी तरह आगाह है और यूरोपीय यूनियन डेनमार्क के पीछे डट कर खड़ी है कि ये एक तरफा फैसले नहीं हो सकते। और ग्रीनलैंड के लोगों का खुद कहना है कि ग्रीनलैंड का मामला जो है वो ग्रीनलैंड के लोग ही हल करेंगे डेनमार्क के साथ मिलकर।
0: एग्जैक्टली
1: डेनमार्क के साथ मिलकर जब वो ये कहते हैं तो ट्रंप साहब की आंखें खुल जानी चाहिए। ये हम लोग जब वो धमकी दे देते हैं ये डिजिटल बक्ति के साथ कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे कि शेर आया शेर आया शेर आया, एक दिन अगर शेर में आने की कोशिश की तो उसको बड़ी जबरदस्त मजामत का सामना करना पड़ेगा। आपने ये भी देखा होगा कि पिछले दिनों बाद यूरोपीय ममालिक में एक रस्म के तौर पर आपने अपने एक दो तीन चार दस दस फौजी भी वहाँ भेजे थे।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और एक दो यूरोपीय ममालिक जो है वो वहाँ पर अपना कॉन्सुलेट भी खोल रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है ये डेनमार्क के मौकफ को तकलीफ पहुँचाती है और डेनमार्क का जो असूली मौकफ है वो अमरीका को रोकता है कि वो ऐसे
0: इकदाम
1: से
0: बाज रहे। अच्छा नसर भाई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी जो है एक बहस चल पड़ी है कि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो मौका की तलाश में हैं कि वो कोई अच्छी सी पोस्ट मिले तो चली जाएं, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना एक नया क्राउन प्रिंस जो है वो चुना है, और उसके बारे में वज़ीर आज़म ने कहा है कि भाई हमारे यहाँ जो इख्तलाफात हैं उसको बैठ के हम हल कर सकते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है कि इस चीज़ को मीडिया में डिस्कशन किया जाए। लेकिन साथ ही में बटल हॉडा साहब ने जो है ये कहा कि इस हुकूमत को तुम फिया क्लूवा नहीं कह सकते, जब वो 80 की दिहाई में एक ऐसी हुकूमत थी तो, और उसको कहा कि ये तो एक किस्म की ब्लास्फेमी है कि तुम उस वक्त को गलत नाम दे रही हो। और साथ में मॉडर्न मिसेस स्मिथ उन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म की ज़िंदगी को बहुत तंग कर दूंगा, ये किस्म की उन्होंने धमकी दी है कि मैं पार्लियामेंट में हमेशा उनके ऊपर जो है वो तनकीद करता रहूंगा। तो आने वाले वक्त में जो है प्रॉब्लम तो होगा, और मैं ख़ुद भी जो है कभी भी मैंने मेथे फेडरसन की पॉलिसीज़ को पसंद नहीं किया या हमायत नहीं की, लेकिन उसका मुतबाद

0: जो था वो बहुत ही ख़तरनाक था कि अगर राइट विंग की पार्टियां मिलकर हुकूमत बना लेती तो हमारी जो है ना और ख़ासतौर पर नस्ल परस्ती के जो पॉलिसीज़ हैं और मुसलमान दुश्मनी की जो मुसीबत हमें ज़्यादा पड़ जाती सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नस्बत।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात की और मुझे इस पर तज्जुब भी हो रहा है कि आपने देखा है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को की हुकूमत को हमारे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद का पैगाम भेजा।
0: और वो पता क्या कहते हैं, मैंने अपने ब्रदरली मुल्क के वज़ीर आलम से बात की है।
1: वो पता नहीं कि इस दुनिया में बसते हैं, कभी चंपा मांगा के बाहर निकल कर देखें कि डेनमार्क है क्या।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
1: और जिस तरह से उनके मुबारकबादी पैगाम को तशहीर किया जा रहा है, मुश्तहर किया जा रहा है, वो उसकी मुझे समझ नहीं आई।
0: वेरी ट्रू वेरी ट्रू।
1: किसी और मुल्क की तरफ से इस तरह का कोई पैगाम ना इनको मिला है हुकूमत साजी का। ये तो एक मामूली सा मामला है और अंदरूनी मामला है।
0: मैंने अपने जो सफीर साहब हैं उनकी वेबसाइट पे भी ये था, तो मैंने वहाँ पे छोटा सा कमेंट दिया है कि हमें हमारे जो मोहतरम सफीर हैं पाकिस्तान के डेनमार्क में, उनको चाहिए कि वो एक अच्छी सी रिपोर्ट बना के हुकूमत पाकिस्तान को दें, ताकि वहाँ पे जब वो बयान देते हैं उनको पता हो कि डेनमार्क में गैर मुल्कियों के साथ मुसलमानों के साथ कैसा सलूक हो रहा है। अब पता नहीं,
1: आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। मैं इसमें सिर्फ यही अर्ज कर सकता हूँ कि उनको ये रिपोर्ट खुद बनाने की जरूरत ही नहीं है। इस मौजू पर के डेनमार्क में तारकीन वतन और खासतौर पर मुसलमानों के मुताबिक और पाकिस्तानियों के मुताबिक सरकारी सतह पर क्या रवैया इख्तियार किया जाता है, इसकी तो रिपोर्टें आपकी कई एनजीओ ने बनाई हुई।
0: मैं यही कहने वाला था कि रिपोर्टें तो हम दे सकते हैं, कोई बात नहीं।
1: आपकी तंजीम इनार ने ऐसी शानदार और तहकीकी रिपोर्टें बनाई हैं, हमारे जो जिम्मेदार अफराद हैं यहाँ अम्बेसी में वही उठा के अपनी हुकूमत को भेज सकते हैं।
0: बिल्कुल, मैंने यही लिखा है अम्बेसडर साहब को, अगर आप चाहें तो हम आपको एक बड़ी तफसील से यहाँ की पॉलिसीज़ मुख्तलिफ पार्टियों की पॉलिसीज़ के बारे में बता सकते हैं। चलिए, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि आने ये जो हुकूमत है मौजूदा कुछ ना कुछ तो बेहतर होगी बजाय इसके कि राइट विंग पार्टियों
1: से। हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि सबका हुकूमत जो थी जबकि वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म थी, क्योंकि ये उसी हुकूमत का तसलसल है,
0: इसने
1: पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात कायम करने में और बनाने में वसत देने में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया।
0: बिल्कुल,
1: ये बात प्रमोश नहीं की जा सकती।
0: जी जी बिल्कुल।
1: इन सब बातों के बावजूद हमारे वज़ीर-ए-आज़म का इस बात इसको मुबारकबाद का पैगाम भेजना ठीक है, समाज में ऐसा होता
0: है सफारती तौर पे तो ठीक है, लेकिन यह कि उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है।
1: आलमी सतह पर ये चीज़ें जो हैं होती हैं और होनी चाहिए।
0: जी जी।
1: उनका ये इकदाम जो है मुबारकबाद का ये काबिल स्टाइक है।
0: जी।
1: लेकिन देखना ये चाहिए कि इस पैगाम के जरिए वो कौन सा तीर मार रहे हैं जो यहाँ रहने वाले उनके हमवतनों के लिए फायदेमंद होगा।
0: एग्जैक्टली बिल्कुल। और इसी खूबसूरत जो बात के साथ हम
1: हाँ एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ,
0: प्लीज
1: ये याद रखिएगा कि रेडियो हमवतन के बानी हम सब के मोहसिन और मेहरबान जनाब हाजी गुलाम मुस्तफा साहब का चेयरम आ रहा है, उसके लिए उनकी दुआ मकसद के लिए मदनी मस्जिद में एक खास एहतमाम किया जा रहा है
0: जुमे के रोज
1: शायद रजा भाई मजीद तस्वीर बता रहे हैं।
0: जी जी।
1: वहाँ पर मैं दरख्वास्त करूँगा अपने सब हमवतनों से जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ जरूर तशरीफ लाएं और रसूलुल्लाह हाजी साहब की मौके के लिए दुआ फरमाएं।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया नसर भाई कि आपने वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया। रजा भाई वो डेट बता दें कि कब है हाजी साहब की के लिए जो हो।
2: जी बाशी साहब बहुत शुक्रिया, ये अगले हफ्ते वाले दिन 13 जून को 2 बजे वेस्टब्रो मस्जिद
0: मक्की मस्जिद में।
2: जी
0: मदनी मस्जिद में। जी
2: वहाँ पे जो है उनके असाले सवाब के लिए जो है मदनी मस्जिद की तरफ से जो है ये और हमारे साथ मिल के जो है ये एहतमाम इस महफिल का किया गया।
0: बहुत खूब। सामिन और नाजरीन ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और जो लोग कोपेनहेगन में और उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनसे भी हमारी ये दरख्वास्त है कि वो हफ्ते के रोज़ 2 बजे मस्जिद में आ जाएं और वहाँ पे हाजी साहब की जो रूह के लिए उनके सवाब के लिए दुआ करें। تو اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, ڈینمارک پائندہ باد.
3: آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ, نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84. ای میل ریڈیو سنیپلائے.

0: वो सदर की तरफ से आप इनको ये
1: पेश
0: तगमा दे
1: करें।
0: दें, इस तरह
1: ठीक
0: ये एक छोटा सा फंक्शन
1: है।
0: करके
1: नहीं,
0: उन्हें दे
1: वैसे
0: दें।
1: ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को भी खुशी होती है ज़्यादा कि अगर जब पाकिस्तान में वैसी में प्रोग्राम हुआ है तो उस वक्त अगर, क्योंकि मलक साहब उधर ही थे और मैं भी उधर था, आप भी थे उधर ही, तो उसमें अगर दिया जाता तो वो ज़्यादा, मैं समझता हूँ
0: मैं
1: लेकिन
0: आपकी
1: उनकी
0: बात
1: अपनी
0: को समझता
1: सोच
0: हूँ, लेकिन यहाँ पे
1: जी
0: ग्रुपिंग है, यहाँ पे ग्रुपिंग है, और ग्रुप जो है
1: ये
0: वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी
1: क्योंकि
0: चीज़ हो, तो
1: जी
0: इसलिए एम्बेसी की भी मजबूरी समझे और उन ग्रुपों के
1: और सोशल
0: भी।
1: मीडिया पे रजा साहब काफी मतलब वैसा वैसा भी इस पे उतारा
2: और
1: अपना।
2: एम्बेसडर साहब पे भी काफी जो है वो तनकीद हुई है कि वो बायस्ड हैं, यानी कि वो साइड लेते हैं। और ये मेरे ख्याल में कुछ इसमें हकीकत भी है, ये सब गलत नहीं है जो लिखा गया था या जो कहा गया है, कि एम्बेसी जो है वो फर्क करती है। और इस मरतबा जो एम्बेसडर हैं उन्होंने किया है, बज़ाहिर नज़र भी आता है, ठीक है। और ये लोगों के जो कमेंट्स हैं जो वो लिखते रहे हैं उसमें बिल्कुल, अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो आपको वो चीज़ जो है वो नज़र आती है। एक फंक्शन में वहाँ पे जब एम्बेसडर साहब गए थे तो इंटरव्यू के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा है कि जी मैं सिर्फ पीटीवी को इंटरव्यू दूंगा, यहाँ के लोकल मीडिया को मैं इंटरव्यू नहीं देता,
1: नहीं बिल्कुल
2: ठीक
1: ऐसा
2: है।
1: ही है,
2: तो
1: बिल्कुल
2: भाईजान की जो हैं वो आंखें जो हैं वो माथे पे हैं, तो ठीक है आप पीटीवी को ही इंटरव्यू दीजिएगा, लोकल मीडिया को बेशक न दें। तो ये है कि वो फ़र्क है। लेकिन तुकीर शाह साहब, मैं तो शुक्र करता हूँ कि ये तगमा जो है मुझे नहीं दिया गया, क्योंकि इस मरतबा और पिछले कुछ कुछ सालों से जिस तरह तगमे जो है ना वो बांटे गए हैं ना, वो इस तरह जिस तरह रेवड़ियां नहीं बांट दे, ठीक है, इस तरह बांटी गई हैं, ऐसे ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो नॉर्वे से एक मफरूर है, करोड़ों का जो है वहाँ पे टैक्स का गबला करके गया हुआ है, पाकिस्तान में है वहाँ पे, और जनाब वो एक गैर मुल्की दौरे पे भी थे और उनको भी जनाब तगमे से जो है वो नवाजा गया है, ठीक है। तो अगर ऐसे लोगों को तगमे मिले तो अल्लाह का शुक्र है, हमें ना ही दें तो हम बेहतर हैं।
0: नहीं,
1: वैसे
0: यहाँ पे ये होना चाहिए कि एम्बेसीज देखिए, जैसे इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में जब मैं वहाँ पर स्टूडेंट था तो मैं ये देखता था कि वहाँ पे बकायदा जब कोई पाकिस्तान डे होता था, 14 अगस्त या 23 मार्च या कोई
1: जी
0: भी दिन होता था, तो
3: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल रेडियो स्नैपलाई।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: रेडियो हमवतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश व खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम में हम बैनुल अक़वामी पाकिस्तानी और डेनिश खबरों पर बातचीत करेंगे। और ये मौजूआत जो हैं ये हम डेनिश मीडिया इंटरनेशनल मीडिया से लेके आते हैं। और इन सब मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनाब नसर मलिक साहब टेलीफोन पर मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, पिछले दो हफ्ते की कुछ छोटी छोटी खबरें जो हैं वो गैर सियासी खबरें सेहत के बारे में, और वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। उसके बाद हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि चंद एक अमवात हुई हैं। एक तो मोराको में एक डेनिश जो शहरी थे वो मोराको के, लेकिन डेनमार्क में रहते थे और वो काफ़ी एक्टिव थे डेनमार्क में इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन में। उनका नाम था सईद मंसूर। तो उन्होंने अपने फेसबुक पे बहुत सी उल्टी सीधी बातें लिखी जिसको हुकूमत ने जो है वो कोर्ट में जाके उसको चैलेंज किया। और कोर्ट ने उनको जो है मुल्क बदरी की, पहले तो सज़ा दी, उसके बाद सज़ा के बाद उनको ये कहा गया कि उनको मुल्क छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो काफ़ी अरसे तक मुल्क नहीं छोड़ा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी शहरियत ख़त्म कर दी तो फिर उनको मुल्क छोड़ने के लिए जो है आसानी हुई। और डेनिश हुकूमत ने मोरक्कन हुकूमत से मिल के जो है एक बातचीत की, जिसमें मोरक्कन हुकूमत ने पहले तो इनकार कर दिया था उसको लेने के लिए, क्योंकि उस पर भी कुछ इल्ज़ाम थे मोरक्को में। लेकिन बाद में वो उसको वहाँ पे ले लिया गया। तो अब जो है वो जेल में थे वहाँ पे मोरक्को में, और पुरसरार तौर पे वो उनकी डेथ हो गई है। चलिए अब, लेकिन दुख की बात यह है कि इंगस्तौबिया ने उनकी मौत पे जो है बड़ी खुशी का इजहार किया और कहा कि मैं बड़ा फ़ख्र करती हूँ कि ये मैंने उनको यहाँ से निकलवाया था। तो उस पर भी अभी वज़ीर ख़ारजा की भी उस पर बयान आया और इंगस्तौबिया को उन्होंने बुरा भला कहा। मैंने भी इंगस्तौबिया की फेसबुक पर जाके कहा कि एक शख्स जो मर जाता है वो जो भी हो उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ख्याल कीजिए। दूसरा यह है कि आपको याद होगा 80s-90s में एक बहुत मशहूर डेनिश जर्नलिस्ट थी ईवा योर्गेंसन, और उनकी भी जो है हार्ट बंद होने से वफात पा गई हैं। वो उनकी 63 साल की उम्र थी, लेकिन वो काफ़ी अरसे से डिप्रेस थी और उनको बड़ा दर्द था। उन्होंने किताबें भी इस चीज़ पे लिखी हैं। तो दोनों की रूह के लिए हम जो है हमारी गुड विशेस। अच्छा, अब एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर वो ये है गूगल की तरफ से। आज हम जब इंटरनेट पे जाके गूगल में कोई चीज़ तलाश करना चाहते हैं तो अगर हम कुछ लिखें तो

0: हाँ, इलाही साहबा जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इनका विजन, इनकी गुफ्तार और इनका किरदार भी आप लोगों के सामने है। बहुत अच्छा वक्त गुजारा इन्होंने, सियासत के हवाले से भी, समाजी हवाले से भी, मजहबी हवाले से भी, और इस वक्त भी बहुत एक्टिव हैं अपने काम के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में इनसे बातचीत होगी कि इनका वीएन जो है वो इसको मज़ीद किस हद तक वो वसी करने जा रही हैं, और सियासत के हवाले से ख़ास तौर पे अगर मैं पूछना चाहूँ तो डेनमार्क की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी इनसे बातचीत होगी। तो सबसे पहले तो लुबना साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि दोबारा आपको हमने जहमत दी प्रोग्राम में और आप तशरीफ़ ले आई। मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर वक्त निकालना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आई एम सो हैप्पी कि आप प्रोग्राम में शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो इस रेडियो हम वतन के बानी और लोकल मीडिया के बानी हाजी मुस्तफ़ा साहब जो इस वक्त अल्लाह पाक के पास चले गए हैं, उनकी खिदमत के हवाले से और इनके किरदार के हवाले से, और जहां उन्होंने ये दाग बेल डाली लोकल मीडिया के हवाले से, इस हवाले से अगर चंद अल्फाज आपकी ज़ुबान से अगर अदा हों तो मैं समझता हूं कि हम सब के लिए भी वो मशलरा भी होंगे और अच्छे भी होंगे। जी
1: जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे बुलाते हैं, तो आप इतने इज़्ज़त एहतराम से इनवाइट करते हैं कि मैं ना नहीं कर सकती, फिर मुझे वक्त निकालना पड़ता है। मुहर्रम के हवाले से मैं ये कहूँगी कि पूरी दुनिया इस सानहे को मानती है, लेकिन हमारे छोटे बच्चे जो हैं उनको नहीं पता, उन्हें ऐसे स्कूल टीचर। तो मैं ये करती हूँ कि मुहर्रम के पहले 10 दिनों में किसी वक्त जब मेरे पास उर्दू की क्लास होती है तो मैं उन्हें छोटे इमाम अली असगर के बारे में बताती हूँ कि वो इतने छोटे थे कि प्यास लगी हुई थी और उन्होंने अपना मुंह खोला, रो रहे थे, तो जालिमों ने तीर से उनको शहीद कर दिया।
0: जी
1: ये कहना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन है कि हम जब तक अपने हमें एक शिद्दत पसंद होने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और लेकिन हमें अपने मज़हब को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आप करना चाहें।
0: जी
1: उसके साथ ही मैं जो है कि हमारे साबका पीटीआई के सदर इमरान महबूब की एलिया, उनकी वफ़ात हो गई है कुछ हफ्ते पहले, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं और बहुत यंग एज में मेरी बहन जस्ट 41 ईयर्स की थी, 41 साल की थी अभी। तो बच्चों के ख्वाब उनकी ये वो जो नहीं, बेचारी कुछ भी नहीं दे सकी, लेकिन जाते वक्त हमारे भाई इमरान महबूब के कंधों पे एक बहुत बड़ा बोझ, जो कि वो अब माँ भी बनेंगे और बाप भी बनेंगे। उनकी छोटी छोटी दो बेटियाँ, गालिबन 3-4 साल की और 6-7 साल की दूसरी। तो सारे सुनने वालों को दरख्वास्त है कि इमरान भाई के लिए दुआ मांगे, उनकी बेगम के लिए दुआ मांगे, इमरान भाई के लिए इसलिए कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे ये सब काम करने के लिए।
0: ठीक
1: और जी हाजी मुस्तफ़ा अंकल, मैं उनको अंकल जी कहती थी। मेरी उनकी मुलाकात जब मैंने इनवान लिस्ट बनाई थी 85 ईयर्स अगो,
0: अच्छा
1: तब मुलाकात हुई थी। और अंकल जी का और मेरा मिजाज बहुत मिलता था। हमने जो कहना होता है, हम वो कहते हैं ना, मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम ज़रा फूल गमले के समेत मार देती हो, तो अंकल भी इसी तरह के थे। मेरे बड़े बड़े उनके साथ यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे बहसें वगैरह हुई हैं, लेकिन दिल के इंतहाई साफ, अपने वतन से इंतहाई मोहब्बत करने वाला, चाहे वो पाकिस्तान का जलजला या सैलाब आए, चाहे कश्मीर में आए, अंकल जी ने सबसे आगे खड़ा होना है। फिर अंकल जी वो जब मुझे अफसानी याद, जब ये वेस्टब्रो मस्जिद की बुनियादें डालने के लिए कुछ चंदे वगैरह इकट्ठे हो रहे थे, मैं इस चीज़ की गवाह हूँ, क्योंकि वो तो ना, उन्होंने तो कभी क्लेम भी नहीं किया ना, मतलब मैं ये हूँ मैं वो हूँ। किस तरह नैरोब्रो में डोर बाय डोर जाके जो नहीं है चंदे

0: لیے کام کرتے تھے. شاید وہ خود اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے, لیکن جو انہوں نے کیا ہے, جو انہوں نے کیا ہے, ایک ایسا پودا کہ نسل بر نسل لوگ اردو زبان کو سنیں گے. اور وہ اپنے آپ کو صرف اسلام کا خادم کہتے تھے. میں نے بخدا ان کے منہ سے کبھی نہیں سنا, میں کہتی تھی, کیونکہ میں جب ویسٹر برو کی مسجد آتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ, اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں, یہ میری مسجد ہے. تو میری مسجد اس لیے کہ میرے پیرنٹس نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا. اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ جو, جیسے کہ ہمارے گھر میں تین فوتگیاں ہوئی ہیں, میرے والدہ کی, میرے والد کی, میرے ہسبینڈ کی, تو نماز جنازہ وہیں پہ ادا کیا گیا. پھر ایک زمانے میں ان کو کچھ پارکنگ کا مسئلہ تھا, میں اس وقت کونسلر تھی, اس وقت بھی جو میرے سے ہو سکا تھا میں نے کیا. لیکن انکل کے منہ سے میں نے نہیں سنا کہ جی میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. وہ بیچارے سیدھے سادے سے انسان تھے, ان کو یہی تھا کہ یہ کہتے پتر ہے مسجد آباد رہنی چاہیے تھی, مسجد آباد رہنی چاہیے. اور وہ کوئی جیسے نہیں ہوتا, کوئی سوچ کے بیانیہ آدمی تیار کرتا ہے, انکل کی یہ نیچر نہیں تھی. انہوں نے بس جو کہنا ہے سیدھے دل سے کہہ دینا ہے.
1: بالکل.
0: اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے, ان کی قبر کو قبر کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. لیکن اپنے پیچھے جو نہیں ہے, وہ ایک ایسا پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں کہ جیسے کہ وہ پاکستانیت کی بنیاد رکھ کے گئے ہیں.
1: بالکل.
0: کہ زبان کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہمارے بچے, چاہے ابھی پہلی جنریشن کے یا دوسرے لوگ گھر کے بڑے سن رہے ہیں, لیکن بچے سٹون میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے سب کانشس میں اردو جا رہی ہے.
1: بالکل.
0: اور یہ کام ایسے پلان کر کے نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا تھا, اور جو خدا کے پیارے لوگ ہوتے ہیں رب ان کو وسیلہ بناتا ہے.
1: بالکل.
0: میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتی.
1: جی بالکل. جی حاجی صاحب کے خدمات اور ان کے کام, ان کا کردار ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا. اور جو انہوں نے صدقہ جاریہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں, اپنے اس پلیٹ فارم کی صورت میں, اپنے بچوں کی صورت میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے ان کے بہت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری, خاص طور پہ رضا مصطفیٰ صاحب کا, اگر میں, کیونکہ میرا ان کے ساتھ زیادہ انٹریکشن ہوا ہے جب میں ڈنمارک میں آیا. اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی, انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا سنا میں نے, اور ملتا بھی ان کو. لیکن رضا صاحب بھی اچھے طریقے سے اپنے خدمات کو پیش کر رہے ہیں, بلکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت میں یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اور سادگی یا پڑھائی کا تعلق میں سمجھتا ہوں خدمت سے تو نہیں ہوتا. خدمت اگر آپ, جیسے آپ نے فرمایا کہ دل سے اگر کوئی کر رہا ہے یا اپنی نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہے, تو اس میں ڈزنٹ میٹر کہ وہ
0: نہیں, اللہ تعالیٰ کے رستے کھولتا ہے,
1: رستے کھولتا ہے. آپ بالکل. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے. تو چلتے ہیں آگے, تھوڑا بڑھتے ہیں کہ جو ہمارا کور ایشو ہے اس وقت, ڈنمارک کی حکومت اس وقت تشکیل پا چکی ہے 69 ڈیز کے بعد, 69 دنوں کے بعد. تو اس حکومت کو ایک تو لبنہ صاحبہ یہ بتائیں کہ اتنا عرصہ کیوں لگا, اور اس میں کیا کچھ نئی چیزیں کوئی انہوں نے جنم لیا جس کی وجہ سے اتنی ڈیلے ہوئی؟ کیونکہ اس سے پہلے حکومتیں 2 مہینے کے اندر اندر بن جایا کرتی تھیں, اور یہ حکومت اگر بنی ہے 69 دنوں کے بعد, تو اس میں کیا کچھ آپ نے محسوس کیا اپنے ویژن کے مطابق, بتائیں.
0: اس میں بہت توڑ پھوڑ ہوئی. نہیں, ڈنمارک آئین کہتا ہے کہ آپ نے 2 مہینے کے اندر جو نہیں ہے اپنی حکومت کو تشکیل دینا ہے. ڈنمارک کا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے منڈیٹ ضائع نہیں کرنا, یعنی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم تو 2-3 اکٹھے ہیں, تم ہمیں پسند نہیں, تم نہیں شامل ہو سکتے. اور معاملہ جو الیکشن کا ہاٹ ایشو تھا, جس طرح کے پچھلے کئی دفعہ ہوا ہے, وہ تھا تارکین وطن سے متعلقہ پالیسیز. تو اس لیے یہ کوئی اتنی حیرانگی کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ نے غیر ملکی دشمن پالیسیز کو سپورٹ کیا تھا ان الیکشن کے دوران بھی, جو نہیں ایسا ہی تھا. میٹ فرگسن نے نیو ایئر کی تقریر میں یہاں تک کہہ دیا تھا, ہاتھ نہیں جوڑے تھے فزیکلی ایسے, کہ بھی جی جو تم سونے کی چین پہننے والے اور جو تم مسلمان ہو, خدا کے لیے چلے جاؤ. اور وقت کے ساتھ سے وہ اپنی جو ہے اپنا جھکاؤ ہر طریقے سے اسرائیل کے بارے میں بات کرتی ہیں. अभी कल परसों एक रेडियो का टीवी का इंटरव्यू था तो उससे एक जर्नलिस्ट पूछता है कि तुम्हारी आइडियल कौन है, वो जवाब में कहती है इसराइल की पहली खातून सदर गोल्डे मैया। और आपको अच्छी तरह पता है वो तो जो फ़लस्तीन की पॉलिसीज़ में इसराइल की जो भी कहानी है उसमें दिलचस्पी रखती हैं कि उन्होंने बहुत कत्लो गारत किया था। तो अगर हमारे एक डैनिश जो है वज़ीर आज़म है उसकी आइडियल ये है तो फिर आप अपने आइडियल को ही फॉलो करते हैं ना। दूसरी तरफ मैं लास लुके को लूँगी। लास लुके को मैं जब वो कंसर्वेटिव में था तब से जानती हूँ, 25-30 सालों से।
1: अच्छा।
0: लेकिन पहली बात है कि जब वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं तो मैं समझती हूँ चाहे अपने मतलब के लिए चाहे कह लें किसी भी वजह से उनके रवैये में बहुत फ़र्क आया। ये जो कुरान लॉ जिसको कहते हैं कि आपको कोई भी मजहबी किताब जलाने की इजाज़त नहीं है, इसमें उन्होंने बहुत एक मेल रोल अदा किया। मैंने उन्हें शुक्रिया का ख़त भी लिखा था, मैंने फूल भी भेजे थे कि थक फॉर सामले डेनमार्क के आपने डेनमार्क को एक प्लेटफॉर्म पर बैठा किया, थैंक यू। वरना जो खबरें वो आ रही थी पुलिस वाले जो नहीं हरासा थे कि एक अंदरूने शहर में एक पैरलर फौज तैयार हो रही थी तारकीन वतन लड़कों की खास करके। तो मैं खुद कोपनहेगन की रिहायशी हूँ और मुझे अपने शहर से बहुत मोहब्बत है, मैं नहीं इस तरह की कोई गड़बड़ चाहती और जो जो करता है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बाद एसएफ पिछले कई सालों से बिल्कुल जिस तरह नहीं यस सर का उसका रवैया, वो एसएफ चली गई जो कि जिसकी मैं एक दफ़ा मेंबर थी, एसएफ की जो खातून अव्वल है वो कुछ भी नहीं कहती, वो कुछ भी नहीं बोलती। मुझे याद है कि जब हिजाब ममनू किया गया था तो सबसे पहला बयान उनका था जिसके जवाब में पुलिस ने ये कहा था क्या हमारे पास और कोई काम नहीं कि हम जिस खातून ने हिजाब पहना हम उसको पकड़ें और उसको जुर्माना दें। हालांकि नंबर ऑफ लेडीज़ थी पूरे शहर में जो मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं निंजर टाइप, नहीं कि आंखें सिर्फ नज़र आ रही हैं जिसम नहीं नज़र आ रहे, उसमें उन्होंने मतलब बड़ा मैं समझती हूँ कि जो रेसिस्ट हैं उनको एक उनसे हामी से हामी मिलाई थी। क्योंकि ये यहाँ का आइन है कि आप जो है आपको पहनावे का और अपने मज़हब का खुली इजाज़त है, आईनी इजाज़त है। फिर पीछे रेडिकल वेंस्टा रहती है। रेडिकल वेंस्टा जो है वो उन्होंने अपनी बहुत सारे मैंडेट अपने वक्त में ज़ाया किए थे कि तारकीन वतन की हामी में, तो उनका तो हमें मौक़ पता है। फिर पीछे थी इनिस लिस्ट। इनिस लिस्ट के कुछ अपने इशू थे क्योंकि वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में नौजवान, उनकी हमेशा कोशिश होती है कि जो नौजवान वोटर्स हैं लाइक पहली दफ़ा के वोटर्स जज्बाती चला दो फाड़ दो इस तरह की नारे ना वो पसंद करते हैं, उन वो कहते हैं जी हमें वोटों से कर्ज है, तो उनकी टारगेट होते हैं पहली दफ़ा के जो वोटर्स होते हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें रखी कि जी हमें डेंटिस्ट चाहिए, ये भी बड़ी अजीब बात है कि डेनमार्क में सारा इलाज मुफ्त है, डेंटिस्ट मुफ्त नहीं है। उसके बाद उन्होंने रखा ट्रांसपोर्ट।
1: अच्छा।
0: के जो है 21 साल की उम्र तक ट्रांसपोर्ट जो नहीं सरकारी ट्रांसपोर्ट जो है जैसे ट्रेन बसें वो आपने मुल्क के किसी हिस्से भी जाना है मुफ्त है और ये सारी चीज़ें ना।
1: अच्छा।
0: और फिर एक तीसरी थी वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जी हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे।
1: अच्छा। इनिस लिस्टन और
0: इनिस लिस्टन ने कहा कि हम काबीना में शामिल नहीं होंगे।
1: वैसे इनके हलीफ हैं हुकूमत में,
0: इनके साथ हैं, लेकिन उन्होंने जो रोल लिया है ना वो सबसे बड़ा रोल है। उन्होंने उसकी दो वजूहत हैं, अंदरूने खाना ये है कि इनिस लिस्ट की अगर आप वो ले हिस्ट्री ले तो ये कोई आज से 25 साल कम्युनिस्ट पार्टी और वेंस्टा ओनसियर जिसको वीएस कहते थे इन सारों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसको इन्होंने नाम रखा इनिस लिस्ट। लेकिन उनकी पॉलिसियां जो नहीं है वो अभी तक मुकम्मल नहीं है, जैसे मईशत की पॉलिसी कह ले इसकी कह ले, वो ज़्यादातर जज्बाती बातें करते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं हमें नहीं इससे गर्ज के पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन पैसे तो चाहिए होते हैं ना घर को चलाने के लिए। उन्होंने जो रोल लिया कि अगर तुमने यानी जिसमें स्पेशली तारकीन वतन का वो है कि इनको अगर तुमने ज़रूरत से ज़्यादा तंग किया जितना तुम कर चुके हो तो हम आपकी हुकूमत डिसॉल्व करने का हमारे पास मैंडेट है। अब इसमें जो अच्छी बात हुई है कि वो हमारे चौकीदार बन गए हमारे हकूक की हिफाजत के लिए। इंग्लिश टॉयबेया जो बक बक बक बक जो नहीं है शी इज़ नॉट देयर। डेंस फोल्के पार्टी वो जब उसकी मर्जी होगी वोट देगी, जब नहीं देगी तो वो मतलब ये तीन चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं।
1: अच्छा।
0: और बाकी सियासत ऐसी अच्छा। कोई चीज़ नहीं कि जिसको आप डिक्टेट करें और वो हो जाए। सियासत ये है कि जो मुमकिन है उन हालात में आप वो करें।
1: अच्छा, आपने ये जो फरमाया कि इनस लिस्टन का ये कहना है कि तारकिन वतन को आपने तंग नहीं करना, तो तंग तो ऑलरेडी वो किए हुए हैं जो उन्होंने पॉलिसियां जो तारकिन वतन के लिए बनाई हुई हैं या जो उनके मिसाल में इजाफा कर रही हैं तो वो तो ऑलरेडी हैं, उनको बजाय ख़त्म करने के या वो तो उसी तरह वो चल रही
0: है। नहीं, डेनमार्क में एक चीज़ है सियासत में कि जितना टाइम लगता है ना एक चीज़ को मंजूर एक बिल को मंजूर करने के लिए उससे तिगना टाइम करता है लगता है उसको जैसे कालादम करार देने में।
1: अच्छा।
0: तो जैसे मैंने एक चीज़ पे मैं उनके साथ काम कर रही हूँ वो नहीं चेंज हो सकती, लेकिन हम ये कर उनका कहना है कि हम इससे जो हो गया सो हो गया इससे आगे नहीं। और जो सबसे हॉट इशू है मेरे लिए एक के जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं उनके माँ बाप चोर है डाकू हैं इसमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं। मैं रेडिकल वेंस्टा में भी और ये इनके साथ भी डायलॉग में हूँ कि जो बच्चे पैदाशी तौर पर यहाँ डेनमार्क में होते हैं उनको बाय बर्थ डेनिश नेशनलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है। दूसरा ये जो डेनिश नेशनलिटी हासिल करने का जो वो है एक टेस्ट देना पड़ता है उसको ख़त्म होना चाहिए। पुराने वक़्त में जैसे था कि आपको एक ज़बान का हल्का सा टेस्ट देना पड़ता था रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अब जो है ये एक नाजायज़ हरकत है क्योंकि इस बारे में बहुत लिखा जा चुका है तकरीबन तीन समर्स तीन गर्मियों की छुट्टियों में, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं होती उनके पास अखबारों वालों के पास या टीवी के पास। इसके ऊपर हम बहुत सारे हम लोग कुछ लोग हैं कमेटी है हमने बड़ी मेहनत की है, लेकिन अब अगर यही है कि हम आने वाले वक्त में उनसे मुज़ाकरात करने जाएंगे इसके साथ इंग्लिश लिस्ट के साथ कि आप बताएं यहाँ पे आपने ज़बानी कह दिया ना कि वी गोइंग इन फॉर लर्निंग्स टाइमिंग, अब मुझे बताएं एक सिंपल सवाल है जो बच्चा आज 14-15 साल का है कल को हो सकता है वो आपका वोटर बने, आप आने वाले लोगों के लिए खासकर स्पेशली वो बच्चे जो यहाँ के स्कूलों में पैदा हुए हैं, क्योंकि मेरा मौकफ़ यह है कि अगर वो ये चीज़ें क्लियर नहीं ना कर सकते देन एज अ टीचर हम फेलियर रहे हैं कि हम उन बच्चों को कुछ सिखा ही नहीं सके, वो यहाँ के पढ़े बच्चे वो क्लियर ही नहीं कर सकते। तो हम बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पर नहीं कर सकते, लेकिन ये जो नहीं पहली लिस्ट पे है
1: जी।
2: अभी आपने कहा कि गारी खेल वेंस का आप उसकी मेंबर भी हैं और बोर्ड में भी बैठती हैं, तो अभी ये जो नई हुकूमत बनी है उसमें आपकी पार्टी जो है वो उसमें वजारतें भी हैं, तो सोशल डेमोक्रेट का अभी ये 11 जून का एक बयान है जो उनकी फेसबुक साइट पे आया है, और आपको पता पेट्रोल पे डेंस फॉर के पार्टी चाहती है कि औकीफ जो है वो ख़त्म हो ताकि जो है वो जो शहरी हैं उनको सस्ता पेट्रोल मिले ताकि वो इतने खर्चे ना उनके बढ़े, जिसमें सोशल डेमोक्रेट जो लिखती है वो मैं डेनिश में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सोशल डेमोक्रेट पिंसिन येल्पन्स कल्को छिलतेम तहा लंग छिल आवर, यानी उनका कहना है कि मदद उनको देनी चाहिए जिस तरह हमें छूट मिलती है
0: किलोमीटर की।
2: नीचे लिखते हैं टेंस कॉल्पटी, यानी वो क्या चाहते हैं फिंग छिल एल उलेनिंग और छुविस्ता छिल छिल फिल टीवी छांका ई डेनमार्क, यानी कि ये सोशल डेमोक्रेट दो हाथ आगे चली गई है। वो कहते हैं हम गैर मुल्कियों को भी जो है ना वो छोड़ नहीं देना चाहते, हम सिर्फ उनको देना चाहते हैं जो काम करते हैं। तो लुबना साहिबा आपकी पार्टी इसमें उनका क्या बयान आया, क्या रद्द अमल आया इसको, मैं पढ़ के जो है बड़ा مجھے بھی تکلیف ہوئی. کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت آئی ہے اس میں انس لسٹن غاریک ہیل وینس کا السینت تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ غیر ملکیوں کے لیے جو ہے ایک نرم گوشہ رکھتی ہیں, لیکن اس بیان پہ جو ہے میں نے ان کا کوئی بیان نہیں پڑھا یا میری نظر سے نہیں کم از کم گزرا کہ انہوں نے انہیں کہا ہو. اور اگر آپ مورن پلز کو جو ہمارے انٹیگریشن منسٹر ہیں ان کی آپ بیانات لے لیں تو وہ تو بالکل اسی طرح ہی بیان دے رہے ہیں جس طرح ڈینش فولکر پارٹی دیتی ہے.
0: پہلی بات ہے کہ آپ یہ سیکھ لیں کہ ڈینش فولکر پارٹی اور سوشل ڈیموکریٹ میں ایک نام کا فرق ہے, ٹھیک ہے. وہ کیسے, کیونکہ جیسے پیٹرسکو گروپ ہے اس کی ماں جو تھی وہ اسٹوگرو میں ایک نامی گرامی سوشل ڈیموکریٹ تھی. جب کچھ سال پہلے جب وہ ہوا تھا, کیا تھا اس کو کہتے ہیں, افٹرلون کی ساری کہانی چلی تھی, تو بہت سارے لوگوں نے مل کے کہ یہ جی ہم نے اس ملک کو چلایا, وہ فیئر بھی تھا, تو آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک, کیونکہ آپ کو کئی چیزوں میں اپنی انرجی نہیں ضائع کرنی چاہیے, تو آف کورس آپ جب وہ وقت آئے گا کہ یہ چیز ول سے ہو تو پھر ہی تب بات کی جا سکتی ہے نا. تو میری جتنی انرجی ہے میں اس وقت کے لیے جمع کروں گی کہ آپ نے, آپ مجھے بتائیں آپ ریڈیکل وینسٹرا ودین کہیں گوف دہیا ایک لینو, میری بہت اچھی سامہ بائٹ ہے انیز لسٹ کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی. لیکن اور ایک اور چیز جو ریڈیکل وینسٹرا نے کی ہے اور جو ہے مجھے اس پہ فخر ہے, کیونکہ ہوتا یہ تھا سوشل ڈیموکریٹ میں یا ایس ایف میں کہ پارٹی کے جو غیر ملکی ممبرز ہوتے تھے انہیں کبھی بھی سامنے کی کسی کوئی عہدے ایون پارٹی کے اندر بھی نہیں دیے جاتے تھے نا, بس میرا لوبہ نہیں جس کے ساتھ بھاگتے جاؤ. ریڈیکل وینسٹرا نے آج سے کچھ سال پہلے یہ کیا کہ ہماری ایک افغانی خاتون ہے, انہوں نے ان کو نائب صدر بنایا پارٹی کے. اس کے علاوہ اب اس وقت جب اسلامی فوبیا ہے ڈینمارک میں, میں سلوٹ کہ انہوں نے ایک غیر ملکی خاتون جو کہ چھپاتی نہیں ہے کہ میں افغانی ہوں اس کو ایک وزارت دی ہے, اور یہ ہمیں امید دلاتی ہے کہ آنے والے وقت میں ہماری آنے والی نسلیں جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ ان کا یہ نام ہے, ان کی جو فاولی ہے اس کو رسپیکٹ دی جائے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جائے نا.
2: لیکن لبنا صاحب آپ نے سمیرہ نوا کا ذکر کیا جو نائب صدر ہے پارٹی میں, کیا ان کی وزارت بنتی نہیں کیونکہ وہ تو نائب صدر ہے پارٹی کی؟ یا تو ہوتا نا کہ وہ پارٹی میں عہدہ نہ ہوتا کوئی, ٹھیک ہے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو ایک وزارت دی گئی ہے یعنی ان کو نظر انداز نہیں کیا گیا, تو نائب صدر کو تو آپ نظر انداز کر ہی نہیں سکتے.
0: بالکل نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس پہ بھی تو اکتفا کر سکتے تھے کہ انہیں صدر بنا دیتے, ایک سٹیپ اوپر کر دیتے نا, نہ ایسا فنچ ہے.
2: اور میں خود اس کی بڑی ستائش کرتا ہوں. دوسرا آپ نے جو ڈینش پاسپورٹ کی بات کی کہ ہمارے جو یہاں پہ اس وقت ڈینش پاسپورٹ لینا ایسا ہی ہے, بلکہ آپ ڈینشوں کو کہیں کہ آپ لے لیں تو وہ بھی نہیں لے سکتے, فیل ہو جائیں گے سارے. اچھا لیکن جو میری ایک تجویز ہے جو میرے خیال میرے ذہن میں کئی سالوں سے ہے کہ ڈینمارک میں آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ یہ مثال کے طور پہ سٹیپ لیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ قانون بنوانا ہے یا بنانا ہے, تو وہ ہمیشہ سارے انکار کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اوکے وی لیو ان فسر, یعنی اس کو ایک تجربے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو لبنہ صاحب کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ حق تو سب کو ہونا چاہیے لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ سوشل ڈیموکریٹ ڈینش فولکر پارٹی کن سے مخارا یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے, لیکن جو میری تجویز ہے کہ ہم وس وی پل لو نا, ہمارے جو بچے ہیں اگر انہوں نے کالج لے لیا ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, کالج کے لیول پہ انہوں نے تعلیم مکمل کر رہی ہے تو ان کو حق ہونا چاہیے جس طرح ہمیں اس وقت ہم نے جب جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا زبان کا ٹیسٹ دے کے ہم نے بھی اسی طرح ہی لیا تھا, وہاں پہ جا کے پولیس اسٹیشن گئے تھے پولیس والا صاحب نے بیٹھا تو اس نے چار سوال کیے تھے جواب دیا تھا کہتا جا کے ہٹ جا ٹھیک ہے, وہ سال ڈیڑھ بعد جو ہے وہ پاسپورٹ مل جاتا تھا. اگر ہم یہ قانون بنوانے میں ایک یعنی کوشش کریں کہ ہمارے جو بچے جو تعلیم حاصل کر لیتے ہیں کمیونزم کی, اول تو پہلے 18 سال کا آٹومیٹک ہونا چاہیے, لیکن اگر ہم کیونکہ 18 19 20 میں جو ہے وہ جا کے کمیونزم مکمل ہو جاتی ہے, तो ऑटोमेटिक अगर उनको पासपोर्ट दिया जाए बगैर ये टेस्ट दिए वगैरह वगैरह वगैरह, क्या मैं यानी क्या ये तजवीज आप समझती हैं कि काबिले गौर है?
0: मेरी तरफ से तो नहीं है, क्योंकि इसमें अब मैं देखें, मैं टीचर हूँ
2: जी,
0: मैं काम करती हूँ कि बच्चों को इंक्लूड किया जाए, तो फिर कैटेगरी बन जाएगी ना कि अब किसी के, हर बच्चे के अपने घर के हालात हैं। अब बिलीव में अब पाकिस्तानी घरों में भी मंशियात और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं जिसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं उनको कभी भी अप्लाई करना ना पड़े, उनका डोपिंग टेस्ट या जो जो भी है वो इनफ होना चाहिए कि डेड बाई डर्थ हुए। फिर वो जो हैं जो कि बड़ी उम्र में यहाँ पे आए हैं, डेनिश स्कूलों में नहीं गए या वो नहीं हुए, उनके लिए एक सिंपल होना चाहिए जिसको वेयरडेस डांस कहते हैं, कि आप जाके 8वीं 9वीं बच्चों से पता कर लें, उन्हें नहीं पता वो सवालात जो कि उस डेनिश टेस्ट में है। तो और या आप ये कर सकते हैं कि अगर आप एक है बोआ फौसले शहरियों की तरफ से, यानी उसमें पता नहीं कितने
2: 10,000
0: हाँ, तो अगर आप वो कर लें, अगर हम बहुत फौसले कर लें साथ, हम मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करके उनको वक्त से पहले लॉबी बना के इस पर आमादा करें, मैं इन दो चीज़ों के लिए जाती हूँ।
1: ये तो मुमकिनात में है,
0: बिल्कुल है, बिल्कुल है,
1: मतलब है, इतना ये मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, दूसरा आप एक तो जिक्र किया आपने जो मिनिस्ट्री मिली है वो अफगानी खातून को,
0: जी जी,
1: आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों के साथ तो ज़ाहिर है वो तो चलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने तारकिन वतन के जो मसाइल या जो प्रॉब्लम हैं इधर उनको भी कोई काम करने की कोशिश कर सकती हैं?
0: समीरा ने हमेशा कहा है कि मैं फ्रंट लाइन पे कभी नहीं खेलूंगी तारकीन वतन की, मेरे पास मेरी अपनी तालीम है उसके मुताबिक मैं करूंगी।
1: अच्छा,
0: लेकिन जाहिर है कि जो पार्टी की पॉलिसी होगी तो अंदर तो ये बातें होती हैं ना, और ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे मुझे किसी ने एक दफ़ा कहा था जब मैं काउंसलर थी कि नहीं तुम तो सिर्फ इनवान का स्पोक मैन हो, तो मैंने उसको टका के जवाब दिया था कि इंट्रोगेशन के मुसाइक द टाइम बेबी बोर्न होता है वहाँ से शुरू होते हैं, जैसे खतने हो गए इस तरह की चीज़ें, ये आप वो क्या चंड क्यों उतारते हैं अस्पताल में, और जब तक वो ताबूत नहीं होता तो इससे तो बड़ा कोई अमल ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये एक चॉइस बनाई है कि जैसे वो उसके वो उसी के बारे में फ्रंट पे रहेंगे, लेकिन ऑफकोर्स हमारी साथी हैं, हमारे से बातचीत करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, उनकी हर चीज़ के बारे में मीनिंग है।
1: ठीक, अच्छा, इस हुकूमत से आप क्या समझती हैं कि मुल्की या बैन अल-अक़वामी हालात इन पे कुछ पॉजिटिव असर पड़ेगा? ये जो हुकूमत अभी बनी है, सबसे पहले तो डेनमार्क में आप देखें कि यहाँ कोई सियासी तौर पर या समाजी तौर पर या कारोबारी तौर पर हालात कोई बेहतर होंगे इस हुकूमत की वजह से, ये जो नई पार्टी है।
0: मेडे फर्गसन ने कुछ साल कुछ हफ्ते पहले कहा था कि तुम और महंगाई के लिए तैयार हो जाओ।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, और मैं क्योंकि ट्रेड यूनियन की वो मुझे नहीं पता उसको उर्दू में क्या कहते हैं, ठिलिस रिप्रेजेंट हूँ, जो कि पुल का काम करते हैं जो गैर मुल्की असातज़ा हैं, तो हमारी तनख्वाह में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जो हम क्यूकम्बर या खीरा इतना लंबा लेते थे वो इतना हो गया, जो मुझे वो एक किक्स हैं उसके बिस्किट्स हैं इटालियन लू, उसमें ज़रा दारचीनी होती है, उसमें पहले 20 होते थे अब 12 हैं। तो मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी हमने आपके साथ शॉपिंग करने नहीं जाना, आप हर वक्त बैठ के उसका बॉन्ग देखती हैं। तो मैं कहा बेटा मुझे समझ नहीं आती कि टोकरी में कुछ भी नहीं है, 1200 का बिन बन गया, 1400 का बन गया, और इस तरह बैन अल-अक़वामी तौर पर देखें हम ऐसे मुसलमान जो नहीं हैं, हमें डेनमार्क से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि डेनमार्क का झुकाव 100% से ज़्यादा जो नहीं है इस प्राइम मिनिस्टर के होते हुए वो है इसराइल की तरफ, ठीक है, इसी तरह जो नहीं है डेनमार्क का जब वो मोदी आया था तो हम कुछ लोग थे, हमने कोई मीटिंग करने की कोशिश की कि ये करते हैं, इंसानी हकूक का इस्तेमाल करते हैं, हमें किसी ने जवाब ही नहीं दिया।
1: अच्छा।
0: तो ऐसा डेनिश सियासत में होता नहीं है। फिर मेरी अपनी पार्टी में जो मसले मसाइल हैं, जैसे कि जब कश्मीर की मैं बात करती हूँ शायद उनके ख्याल बदल गए हों, जो हमारी पार्टी के एक जो मुझे इस वक्त क्या नाम है उनका, जो वजारत खारजा भी रह वजीर खारजा भी रह चुके हैं, वहनजा उसका एक भाई जो है वो पुलटिकन का रिक्स हुआ।
1: अच्छा अच्छा, कश्मीर का आपने ज़िक्र किया तो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में, इस हवाले से कोई मौजूदा हुकूमत ने कोई अपना कोई मौकफ दिया हो या कोई बात ऐसी?
0: मौजूदा हुकूमत ने क्या 12 सीटों का सारा मसला है
1: जी जी,
0: और मैं इस हक में नहीं कि उन 12 सीटों को ख़त्म किया जाए। इसका मतलब है कि जो मेरे वालदैन महाजर थे, मेरा नाना नानी सारे वो श्रीनगर से आए थे, कि आपने जो नहीं है अपना ये मौक़िफ़ ख़त्म कर दिया है, जो पाकिस्तान का जो इधर पाकिस्तान की तरफ है आज़ाद कश्मीर वो इधर रहे और दूसरा उधर रहे ना, आप दस्तरबार हो रहे हैं। बाकी हम लोग लुटा के वहाँ पे आए थे, मतलब सारा कुछ छोड़ के आए थे इस पाकिस्तान के लिए, तो हमें बहुत सारे लोगों को जो भी छोड़ के आए थे वो तो नहीं मिले थे ना, लेकिन इसको एक सियासी रंग दिया गया है कि जी वो कहीं भी वो कश्मीर रहते हो तो फिर भी उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान 70% गालबन 70-75% आज़ाद कश्मीर का जो सालाना बजट है
1: जी,
0: वो पाकिस्तान से आता है, वो हुकूमत पाकिस्तान देती है
1: जी।
0: कश्मीर के इतने वसाइल नहीं है कि वो खुद ही खाएं खुद ही पिएं और सब कुछ करें। जहाँ तक एक बात जायज़ थी कि कश्मीर से बिजली जाती है या हमारा पानी है उसमें रॉयल्टी उन्हें दे दी है, लेकिन ये तो नहीं ना कि बढ़ते जाएं स्टेट के अंदर आप स्टेट बनाएं। आप फौजियों को गालियाँ दे रहे हैं, ज़रा अंदाज़ा करें कि इंडिया उसको कैसे खबरें दे रही है। पाकिस्तान के फौजी अगर कश्मीर में नहीं होंगे तो वो तो जिसा गिरती हुई दीवार है धक्का दे के अंदर आ जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको ये नफरी याद है कि इतने फौजी वहाँ पे आए हैं, लेकिन आप देखें अच्छे बुरे लोग हर तरह के होते हैं, ठीक है। मैं टीचर्स हूँ, टीचर का काम करती हूँ। अभी पिछले दिनों एक बड़ा केस था हमारी ट्रेड यूनियन में कि एक और टीचर था, उसकी बीवी की डेथ हो गई, वो सोडा वाटर की बोतल में अल्कोहल लेके आता था, सारा दिन पीता रहता था अपने काम को काम करने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं सारे टीचर ऐसे हैं। और जाके देखें कि कश्मीरियों का मुख्तलिफ जगह कॉलेज से लेके आगे पीछे उनका एक कोटा है कि कश्मीरियों को फौज में भी लेना है, उनको इस जगह भी लेना है। ऐसी कोई बात नहीं कि फौजी कश्मीरी जनरल कर्नल नहीं है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये जो एक जो कालदम कमेटी है, इस सारी चीज़ के पीछे जो नहीं है वो है इंडिया का हाथ।
1: ठीक है, ये आपका ज़ाहिर मौकफ है जी,
0: लेकिन मेरा मौकफ नहीं है, मैं कश्मीरन हूँ, मेरा खानदान मुजफ्फराबाद में रहता है।
2: पाकिस्तान से जो है वो 12 सीटें जो है वो दी जाती हैं कश्मीर में, और एक सीट का कहते हैं कि 1,00,000 जो रिफ्यूजी है पाकिस्तान में कश्मीरी, तो इसका मतलब है कि 12 सीटें 12,00,000
0: करोड़ है, लाख नहीं है,
2: सॉरी। तो क्या इतने रिफ्यूजीज हैं कश्मीरी जो हैं, तो क्या ये पाकिस्तान ने अपनी एक मोनोपोली नहीं रखी हुई, क्या उसको उस इलेक्शन को या वहाँ पे जो हुकूमत है उसको नज़रअंदाज उस पर नज़रअंदाज होने के लिए ये 12 सीटें रखी हुई हैं? क्योंकि मेरे ख्याल टोटल में कितनी 24 या कितनी 25 हैं वहाँ पे, तो अगर यहाँ से इतनी जाएंगी तो वो अपनी कश्मीर में कैसे हुकूमत बनाएंगे?
0: एक बात को आप ये कह सकते हैं ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। अगर आप नेगेटिव होंगे तो कहेंगे आधा खाली है, पॉजिटिव होंगे तो कहेंगे आधा भरा हुआ है। अब ये है कि ये वो मसाइल हैं, कश्मीरी जो लोग हैं उनको हक है कि जी हम मुतमईन नहीं हैं। ये वो बातें हैं जो जैसे ये बिजली सस्ती हुई गंदम का, अब एक जो पाकिस्तान में पंजाब में बंदा है वो 3 गुना ज़्यादा गंदम के पैसे दे रहा है,
2: ठीक है,
0: कश्मीरी नहीं दे रहे। लेकिन ये तो नहीं जो लुच्चा सबसे ऊंचा, आपको एक देखें इसका असर इस तरह पंजाब में भी एक कमेटी हो सकती है कि जी ये साढ़े मामे लग देना, असी इनू सस्ता दे, असी क्यों 300 किलो गंदम का दे।
2: लेकिन जो कत्लो गारत वहाँ कश्मीर में हुई है
0: जी जी,
2: क्या जिस तरह ये 26 नवंबर को पाकिस्तान में भी हुई थी, उसके बाद जो है वो तरीके लबैक के लोगों को भी कत्ल किया गया, तो क्या आप नहीं समझती कि ये एक सिस्टम है, निज़ाम है पाकिस्तान में जो हमारे जो चंद जर्नल्स जो हैं वो उसको बना के चला रहे हैं, और वहाँ लोगों को अपने, अब तो पाकिस्तान में ना तो आपका कोई आइन है ना कानून है, वहाँ पे तो जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया की एक बच्ची जो पाकिस्तानी निसार थी उसको जो गोलियां मारी गईं उस पे उन्होंने माफियां मांग ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर वही पाकिस्तानी पासपोर्ट की पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान में रहती है उसके लिए ना कोई आवाज़ उठाता है, ना कोई बोलता है, ना कोई करता है, तो ये दोहरा मयार नहीं है आपकी नज़र में?
0: रज़ा, दो बातें हैं। एक तो हम पाकिस्तानी जब भी तब्दीली चाहते हैं ना, हम शॉर्टकट चाहते हैं ऑलवेज। हम आने आज से 20 साल की बात नहीं सोचती। मैं एग्री हूँ आपसे सारी चीज़ों की, लेकिन यही तो नतीजा है कि हर इस हुकूमत का वो तख्ता उल्टा के जी जादू की छड़ी चढ़ने से हो जाएगी। नहीं, हमें चाहिए कि छोटे सेल्स में काम करें। अभी जैसे कि ये कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जो आने वाले वक्त में कौमी असम्बली होगी आज़ाद कश्मीर की, उन लोगों के पास ये हक है कि 12 हों या 14 हों या 6 हों, तो फिर आप ये क्या कर रहे हैं?
2: लेकिन अगर वो 12 इधर से अक्सरियत होगी तो वो किस तरह अपना वो वहाँ पे
1: उसको चेंज करेगा? उनका यही मुतालबा है ना, वो कालाधन कमेटी जो है, कि ये 12 सीटें आज़ाद कश्मीर से सिलेक्शन इनकी हो अगर होनी है, क्योंकि ये 12 बंदे जो हैं ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों से।
0: जी जी, मुझे पता
1: है ना, ये आप बताएं ना कि आप स्वीडन में जाके नुमाइंदगी कर सकती हैं अगर आपको?
0: नहीं नहीं, लेकिन अब आप स्वीडन से इससे इसका
1: मिसाल इसकी हैंडलिंग जो है ना, ये अच्छे
0: आप बिल्कुल नहीं हुई, तो आप बैठ के बात करें कि आप देखें ना कि जैसे कि 1 करोड़ पर MNA मिलता है, अगर इन पे ये है कि जी इस्तेमाल नहीं करते तो बताएं ना बाकी कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आप चीज़ को जड़ से पकड़ें, ये नहीं कि जो बंदा बोले उसी का मुंह बंद कर दे, लेकिन है कि जो तो सिविल शहीद हुए हैं इस सारे बलवे में, मुझे बहुत दुख है। और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन टच हूँ अपनी ख़ानदान से पाकिस्तान में, उन्होंने फेंटी चढ़ा दी है जो पाकिस्तान से सिपाही फौजी, वो मुझे नहीं पता वो उसका जिक्र क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर एक सिविल शहीद होता है तो उसकी तस्वीरें आ जाती हैं, ये आ जाती है, वो जाती हैं। मेरे खावन का भांजा इतनी बुरी तरह जो नहीं है वहाँ पुलिस में काम करता है मीरपुर में, उसकी इतनी बेचारे की फेंटी फा दी है कि उसकी माँ ने वो बस आखिरी दुआएं पढ़ना शुरू कर दी थी। अब जब आप इतने करीब हैं और देख रहे हैं कि ये वाला यानी जो सरकारी मुलाजम है उसके साथ ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो इतने घूस बेचते पयान है। मुजफ्फराबाद में और मीरपुर में कोई बिजली किसी सरकारी बंदे की जुरत नहीं जाके मीटर की रीडिंग ले, वो टांगे तोड़ के बाहर फेंकते हैं। तो जो अनखी सिविल है उसको भी देखना चाहिए, तो ये इतना सिंपल नहीं है।
2: नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है कि इतना सिंपल नहीं है, लेकिन जो आपने जिक्र किया ना कि ये मीडिया में क्यों नहीं आता कि कितने लोगों को जो है वहाँ पे जो सरकारी मुलाजम है उनको जो मारा गया है या शहीद किया गया, तो वो उसकी शायद ये भी वजह है कि वो मीडिया में अगर बताएंगे कि इतने लोगों को वहाँ पे मारा गया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा हुकूमत पे कि जी इतने लोग तो वहाँ पे उनको जो है वो कुट चढ़ा दी गई है, तो शायद उसको जो है वो नंबर्स को नीचे रखने के लिए
0: ना। यार मेरा ख्याल है कि इसकी जो मेरा दिमाग कहता है कि इसकी वजह ये है कि जो भी हुकूमती कुवतें हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता क्योंकि एक नहीं है, उसमें यह है कि वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, बट नथिंग इज़ अंडर कंट्रोल,
2: कुछ भी नहीं है। और ये आप सारे कहीं देख लें, ये तो सिर्फ एक चंगेरी की जो है वो देर है कि वो बस यकीन करें ऐसी आग लगेगी कि ये सब जो है उसमें जो है वो जल के खाक हो जाएंगे।
0: लगेगी, लग चुकी है, लग चुकी है।
1: चलें जी, आने वाला वक्त हम सब के लिए या पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के लिए भी अच्छा ही हो, और मैं समझता हूँ किसी भी मसले का हल वो एक टेबल पे बैठ के
0: हल्ला की सूरत में होता है।
1: ताकत से मैं नहीं समझता, वक्ती तौर पे असल हो सकते हैं।
0: तो ये जो ताकत इस्तेमाल करते रहे हैं, चाहे पंजाब में करते रहे हैं, चाहे ये उसी का नतीजा है ना कि हर चीज़ फट गई है।
1: बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा लुबना साहबा, मैं जितने भी मेहमान आते हैं प्रोग्राम में, मैं उनसे यही ये सवाल करने की जसारत करता हूँ कि हर इलेक्शन में, चाहे वो कमून के हों या पार्लियामेंट के हों, उसमें हमारी अदम दिलचस्पी इस हद तक क्यों होती है कि हम ना तो काउंसलर्स इलेक्ट हो सकते हैं ना पार्लियामेंट के मेंबर इलेक्ट हो सकते हैं, इसके पीछे क्या वजूहत हैं, ये थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि हमारी दिलचस्पी वक्त के साथ साथ इसमें क्यों कमी हो रही है, हम ये क्यों नहीं सोचते कि आने वाले हमारे बच्चे जो हैं तीसरी चौथी जनरेशन के, उनके लिए ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, हम तो अपना वक्त गुजार जाएंगे।
0: देखें, अभी कुछ देर पहले मैंने रजा को कहा कि हम शॉर्ट टर्म की सोचते हैं, ठीक है। दो वजूहात हैं, हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि आपकी एक मुश्तरीका डेनिश माशरे को चलाना एक मुश्तरीका जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को यंग एज में, जैसे मेरे अबू ने डेंस्क कम्युनिस्ट पार्टी का मुझे मेंबर बनाया था, आई वाज जस्ट 15 इयर्स ओल्ड, कि आने वाले वक्त में आपकी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि जब आप बच्चे ये देखते हैं बेहिसी है, अब्बा उसको बुरा कह रहा है, अम्मा उसको बुरा कह रहा है, जब इखलाकियात की बुनियादी थोड़ी बहुत तरबियत जो नहीं है जिसमें इत्तफाक बताया जाए, आप वो बताते ही नहीं। अब टेलीफोन करके जो बता रहे होते हैं, एक तरफ वो देखता है कि मेरा अब्बा इसको अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल चाल है, फ़ोन बंद होती है तो उसको कहता है ऐसा के तैसा जो नहीं। तो इस सबसे पहले हमने अपना मुहासबा खुद करना है। दूसरी बात है कि हम परवाह करते हैं ना, इलेक्शन के दिनों में हमारी हमें पग नज़र आ जाती है कि इन ऊँचा रखना है सारे, क्या वो काउंसलर और क्या वो जो नहीं है। आज तक कुछ काउंसलर सिवाए वो कासिम नज़ीर के वो नहीं बता सके कि क्या है, क्या उन्होंने किया है। मैंने एक मीटिंग जनवरी या दिसंबर में की थी 2025 में या जनवरी 2026 में, जिसमें मैंने आप लोगों को वादा किया था कि हम दोबारा ये मीटिंगें वक्तन फक्तन करते रहेंगे, लेकिन उसके फौरन बाद फिर जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन का ऐलान हो गया, पार्टियों में किसी के पास टाइम नहीं थी। तो अब इस वजह से मैं समझती हूँ कि वो जिसको डैनिश में नहीं कहते, मैं आपकी जवाब दे हूँ कि मैंने वो मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, तो उसमें मैंने इन सब को लिखना है कि बताएं कि आपने पार्टी के कामों के साथ कहीं हमारे लिए भी कुछ किया है, हमारे मीन तारकिन वतन जो नहीं है, क्योंकि कमून पे असर इन्फ्लुएंस जो नहीं है सवाए तारकिन वतन की जो वीज़ा है डैनिश नेशनलिटी, बाकी सेहत तालीम इन सब, ये आप में ऐसे काउंसलर कर सकते हैं, ये आप पार्लियामेंट के मेंबर में नहीं बैठ के कर सकते हैं। एक तो पाकिस्तानियों में बिला जवाज ये चीज़ आ गई है कि जी मैंने तो इलेक्शन लड़ना है पार्लियामेंट का, क्योंकि वो पाकिस्तान जाते हैं बताते हैं हम MNA है जो नहीं, इसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा आप अपनी उसकी सोचते हैं, लोगों के लिए नहीं सोचते। तो ये कि फिर मैं लोगों से कहूँगी कि अपने बच्चों को पार्टी के मेम्बर बनाएं, यंग बच्चों को जो उनकी ओंगडम्स की आउटडीलिंग आती है, उनके खत उनके मेल्स वो कभी फिर इनको स्काउट हुआ पर ले जाते हैं, आदाब जो हैं सियासी पार्टी में बैठने के वो, ताकि बच्चों को वो समझ आए।
1: ठीक, अच्छा ये अभी जो एक मुआहदा अभी मुकम्मल हुआ नहीं है, 2 महीने के अंदर अंदर ये सारा ये अमेरिका ईरान मुआहदा, तो इस हवाले से अगर बताना चाहें कि ये क्या समझते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान में इसका किरदार तो है, लेकिन इसको इस किरदार को अमेरिका ने उस हद तक यानी पजीराई नहीं बख्शी, क्योंकि चाहिए तो यही था कि जितना किरदार हमारे फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म साहब ने इसमें अदा किया उस हिसाब से उनको उसकी उसका सिला मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे ही उधर इलेक्ट्रॉनिक साइन करके दोनों ममालक ने तो इसको शुरुआत तो कर दी है, लेकिन मुकम्मल तो अभी ज़ाहिर है 2 महीने के अंदर अंदर होगा। इसके हवाले से क्या आप समझती हैं?
0: मैंने क्या समझना, मैं वही समझती हूँ जो आप समझते हैं, कि उन्होंने स्पेशली अमेरिका ने अपना उल्लू सीधा कर लिया,
1: ठीक है, फेस सेविंग मिल गई उनको।
0: हाँ जी, क्योंकि कई दफ़ा होता है ना अपना थूका चाटना मुश्किल हो जाता है, दैट्स व्हाट दे डिड, क्योंकि खुद अगर करते तो फिर आता जी हाँ अमेरिका ने देखो जी अपने लफज विड्रॉ कर लेते नया कितने, उन्होंने कोई तीजी चीज़ चाहिए सी कि जरा कहने जी उसके कहने पर हमने किया है, तो उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर दिया।
1: लेकिन आने वाले वक्त में आप नहीं समझते कि ये तकमील तक पहुंचेगा, क्योंकि इसी दौरान इसराइल ने दोबारा लेबनान पर बहुत ज़्यादा हमले किए हैं और उसमें काफ़ी तादाद में शहादतें भी हुई हैं, तो अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो आप समझते हैं कि इसको मुकम्मल किया जाएगा वायदे को, क्योंकि ईरान का तो ये मौक़िफ उसमें शामिल है ना वायदे में कि लेबनान पर या बाकी जगहों पर ये हमले वगैरह नहीं होंगे, इसमें शामिल है ये
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन है कि उसका नाम अमेरिका है, जो दूसरा हरीफ है वो कुछ भी कर सकते हैं, जंगल का बादशाह अंडे दे बच्चे दे, हम आप और मैं क्या कर सकते हैं।
1: लेकिन इसमें आप नहीं समझते कि पूरी दुनिया को इसमें शामिल होकर मिडल ईस्ट को भी या यूरोप को भी या बाकी ममालिक को भी इस वादे को कामयाब बनाना चाहिए?
0: बिल्कुल, लेकिन
1: ये सूरत हाल अमन की तरफ जाए।
0: देखें, इससे पहले अगर मिडल ईस्ट एक किरदार अदा करता तो आज फलस्तीन के ये मसाइल नहीं होते।
1: जी,
0: उनको डे वन से ही दिलचस्पी है डॉलर से, अमेरिका से, उसका जनी। तो मैं उनसे कोई, और फिर ये जो दुबई ने किरदार अदा किया है पाकिस्तान के हवाले से, नेगेटिव किरदार, तो ये तो छुपी हुई बातें थी ना। हम बेशक कहते जी हम मुसलमान भाई भाई हैं, पर वो उनको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और बाकी जो है कि एक अच्छी चीज़ हुई है कि मेरे भाई जो है वो बिजनेस की दुनिया से हैं, सुनते मुझे पता चलता रहता है कि अब इवन डेनमार्क से भी लोग पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव चीज़ हुई है, वरना तो पाकिस्तान को तो बिला वजह ही बुरा भला का आ जाता था, वो काम भी जो उसने बेचारे ने किए भी नहीं। तो ये कि उन पाकिस्तान की एक नई शनाख्त हुई है इंटरनेशनली, और ये एक अच्छी बात है। बाकी हम खुदा से दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि हो। आखिर में मैं डेनमार्क के हवाले से सिर्फ ये कहूँगी कि ये मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था, क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट को मदगम करने की कोशिश की गई है। डेंस फोल्केपट्टी और सोशल डेमोक्रेट एक हैं, अगर बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर जाएँ तो डेंस फोल्केपट्टी का वजूद ख़त्म हो जाता है। अभी तो वो एक जुमला कह रहे हैं कि कुछ भी कह लो, सोशल डेमोक्रेट सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है।
1: अच्छा,
0: तो मेरा दिमाग कहता है, मेरा तजर्बा कहता है कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे।
1: अच्छा,
0: क्योंकि ये इतने दूर है एक दूसरे से, यानी अभी तो ज़ाहिर है इनके ऊपर प्रेशर भी था, किंग का प्रेशर भी था कि भी हम इसको निपटाओ ना, क्योंकि उसके ऊपर उंगली उठती है, फरक के ऊपर जो कोंग है उसके ऊपर उठती है। तो अभी तो इन्होंने निपटा लिया है, लेकिन जब प्रैक्टिकल डीवीसी के, जब मईशत, ये पैसे पेशेंट्स को देने हैं, ये स्कूलों को देने हैं, उसमें मेरा ख्याल नहीं कि सोशल डेमोक्रेट और एसएफ स्पेशली ये मुत्तफिक हों।
1: अच्छा,
0: क्योंकि जो एसएफ की खतून अव्वल है, आपको पता नहीं याद है या नहीं कि वो पता नहीं 100 मेंबर भी नहीं थे जब पार्टी डिसॉल्व होने जा रही थी, तो इसने ओवरटेक किया था। ठीक है, उस बेचारी ने बड़ी मेहनत की है, ठीक है, और उसने अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली भी की है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये लंबे अरसे के लिए चल सके ना, 4 साल बहुत लंबा अरसा है।
1: आप जैसे कह रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन, उसमें फिर आप क्या समझती हैं कौन सी पार्टी सामने आ सकती है मिड टर्म इलेक्शन के बाद? डेफिनेट अगर इन्होंने कोशिश करनी मिड टर्म इलेक्शन की, तो ये मौजूदा हुकूमत या वज़ीर आज़म ये तो फिर ज़ाहिर साइड पे होंगी, या कोई सामने और आएगा?
0: नहीं, अब लोग ज़रा सोच के, क्योंकि बेसिकल डेनिश इटेल्स के डेनिश लोगों की जो ज़हनियत है या जो दिमाग है, वो अपने मुल्क की माशरे के हिसाब से बटा हुआ है। फिर लोग ये है कि 2 या 3 बड़ी पार्टियाँ होंगी। अच्छा, लोग फिर सोच के वोट डालेंगे ना, ऐसी दिल से नहीं, अच्छा जी इसको दे दो, इसको दे दो, क्योंकि इस दफ़ा तो ये हुआ ना, इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो।
1: तो लास्ट हो गए, आप समझती हैं कि ये सामने आ सकता है मिड टर्म इलेक्शन में?
0: आ सकता है
1: क्योंकि उसका भी इस हुकूमत में जाहिर है रोल तो है ना, तो वो कर सकता है।
0: नहीं, उसने ये किया ना कि सारी जिम्मेदारी इनको दी है, वो पीछे सिर्फ जो नहीं है वो चाबक लेके खड़ा हुआ है कि गंदे काम तुम करो, सफाई मतलब करवा रहा है।
1: ठीक है, ठीक है, चलें जी, आने वाला वक्त ही ये बता सकता है, तो देखें कैसे होता है। अच्छा, आखिर में हमारे अपने तारकिन वतन के लिए कोई ऐसा मैसेज, चाहे वो सियासी तौर पे हो, चाहे समाजी तौर पे हो, या मजहबी तौर पे हो, या एज ए मतलब कोई जनरल कोई, अगर आप मैसेज देना चाहें कि आने वाले वक्त में हमें अपने बच्चों को किस तरीके से आगे चलाना चाहिए ताकि इस माशरे में वो जम हो या इसमें अपने किरदार को अच्छे तरीके से अदा कर सकें?
0: आपको अपने बच्चों को उनकी शिनाख्त देना चाहिए।
1: ठीक,
0: अक्सर मुझे बहुत तासुफ और परेशानी या दुख होता है कि आप बैठे जो नहीं अपने बच्चों के साथ, जैसे मेरी उर्दू की क्लास है तो उसमें एक माँ आके पूछती हैं एग्जाम्पल कि ना वदन गीक थी, तो मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ। अपने बच्चों से उर्दू बोलें, भले ही वो आपको डेनिश में जवाब दें, उर्दू आप बच्चों की एक सकाफती शिनाख्त है।
1: ठीक है,
0: मुझे 55 साल हो गए डेनमार्क में, मुझे आज भी लोग पूछते हैं तुम कहाँ से आई हो, मैं आगे से कहती हूँ मैं वेल्बी से आई हूँ। तो कहने का मकसद है क्योंकि आप जब जुबान बोलते हैं उसमें तमीज़ भी है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जो ही आप किसी से आपकी आंखें मिले आपने उसको सलाम करना, ये नेकी है। इंतज़ार नहीं करना कि वो आपको सलाम करे, इससे इंसान का ईगो भी ख़त्म होता है कि जी वो करेगा तो मैं करूँगी। दूसरी, खुदा के लिए बच्चों के सामने टेलीफोन पे अपने दोस्तों की बुराइयां ना करें। ये बड़े ना पंजाबी कहते जो खोचल होंगे गल्ला सुनते रहते, ठीक है, फिर वो कहते नहीं या फस्तो हो गए, आप ये कहती हैं तो मैंने तो ये सुना है या वो सुना है ना। बच्चों के सामने आप जो नहीं है, जो चीज़ें आप इखलाकियात की मज़हब की बच्चों को सिखाने चाहते हैं उनको बच्चों की मौजूदगी में मत तोड़ें।
1: ठीक।
0: और बाकी अच्छा, पाकिस्तानियों के हवाले से
1: कहना चाहते हैं आप?
0: हाँ जी, पाकिस्तानियों
2: जी, लुन्ना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो बच्चे वो करते हैं जो बड़े करते हैं, वो नहीं करते जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। और ये यकीन करें, हकीकत है, मेरे तीन बच्चे हैं, जब हम उनको कहते हैं ना कि ये आपने काम नहीं करना तो वो उसको नहीं कर, लेकिन जो हम काम कर रहे होते हैं अच्छा हो या बुरा वो यकीन करें उसको कॉपी करके वो करते हैं। तो ये लुबना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया।
0: तो बाकी मैं बहुत सर्विस में गई थी तो वहाँ पे मैंने एक देखा कागज़ पड़ा हुआ था कि आप ना अपना वसीयत नामा बनाएं। एक बूढ़ी सी खातून है और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारी उसमें अच्छी चीज़ें हैं और मेरा आपसे वादा भी है क्योंकि मैंने उसको इतना डीपली नहीं पढ़ा, मैंने जस्ट उठाया और लेके आ गई हूँ ना। उसमें जैसे आप अपने बच्चों के नामजदाद करना चाहते हैं, जायदाद अगर आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो उसकी जो भी मालियत होगी उसका बच्चों को 15% देना पड़ेगा, आपकी वफात के बाद जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसी तरह आपके जो अंदरूनी अज़ा हैं वो मैंने सुना था कि डोनेशन और इस तरह का आधी खादी खबर चल रही थी तो उस सिलसिले में मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अपनी तैयारी करूँ।
1: इस पे आप काम करें जी, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर आने वाले दिनों में फिर इस पे प्रोग्राम तफसील के साथ भी करेंगे
0: इंशाल्लाह।
1: तो जी मज़े नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी बातें हुई हम सब के लिए इंफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर फ़ायदा मंद हुई होंगी और जो कोई नागवार गुजरी उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक नए प्रोग्राम के साथ नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।